0: பத்திரத்துக்கு ருபியா ஏத கொல்ல கொம்பு தெமாக்கும் உரிதுவும் ஏடிவியும் ஹோதம் நீங்க
1: विष्णुम ताजा कुर्मट्टा का आदिर्युम का तफात कंतत्त के कुरंचे है राजुआ स्क्रेबु बुरफत लफ्स फद विष्णन जे कुलिवरता की विष्णुम ताजा का मति के भेटम कुलिविदान कुलिवरता के मिफद कुलिवरे कुल हेदम की विष्णुम तरग की वान कमे राज्य के कोम में हिसाबे के होरी गेंबस एबस आगे देखो मकानुला पीएसएम के चैनल तक फोन अड़ो हाला बलालम फसे हगोते
2: पीएसएम एयर ದಿವೇರಾಜ್ಯ ಅಡಾ ದೀನುಗೆ ಅಡು ಅದಿ ದಿವೇ ಎಫ್ಎಂ ವಿಸ್ ಅಡು ಹಾಲವೇನೆ
1: ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಅದಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಲಾಲವೆ
2: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏರ್ ಐಒಎಸ್ ಅದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಕುಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವೇನೆ
1: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏರ್
2: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರಪ್ಪ

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो गेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हमें कनी दिवे राज्य चाडू
2: दिवे हींगे अमील लवंत कंग कुरी हरु है दे
3: दिवे हींगे उफेदुन तेरी कंग दक्कुआ दे
2: दिवे हींगे माजी गे मंजर ता सिफ़कोद दे
3: दिवे हींगे अडु
2: दिवे हिराज्य गे अडु
3: इंहा सतर्ते का साल इस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
4: गड़ी मिंदुर कुरी एकार जही असमुंतिया गिंदवनी दिवे हिराज्य गडु

0: mihai samu mi hafta ge program mi otini mu makame ngas
1: warang ufave mi hafta majidia skula hasa kolemonima
0: uriya ku denna veswara ufave re kamiyav do sagaga eden
1: mihai hisabum uriya
0: adi zik waki velan
1: wassalamu alaikum
2: madarsa kudinge gade
3: दुनिया के हतरु बितु
4: राचे के उतुरा देखुनु
3: खबरा मालूमात
4: उठ में नेति सविस कडीरु
3: दिवे ही राज्य के आडु
4: एंगा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: राज्य के कोम में हिसाबे गहुरी के बस एवज आगे देखो मकानों ला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाड़ो हाला बलालुम फासे हगोते
6: पीएसएम एआ
7: दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो अधि दिवे ही एफएम बस आड़ो हाल बैने
5: टीवीएम यस टीवी अधि पीएसएम न्यूज़ बलाले
6: पीएसएम एआ
7: आईओएस अधि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करे बैने
5: पीएसएम एआ
7: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರಪ್ಪ
0: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
8: ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

0: Mamma, badu aveja.
1: Tarifla, soni aga tu buni. Mamma ibece mi ke muluwa.
0: Papa, gadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel masha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है मामा
4: किस वजह से
1: मामा फोन एक का हाँ मादमार यह तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैसे फोन का डोंटा
5: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले बेने दे सोनिया गाता
6: एहे नहीं गुलुंता बदहे कुराफा दैन एम गातु गावा गुलुंता का एम फुरतम इस खंदे मा

0: আর মিসা বারাম মিরু বিকা মিরু সেয়াতটি নুবতা কোন দুয়াহে
1: এহেন্তা একম কুরি গনু লাহে গিনা বিতন আন্না মে পুনি মেনু উমারা দেনি
0: এদেন জুয়াং ইরুতা
1: আল্লাহু আকবার কামাকো মে আর মুসকুলি
0: মুসকুলি বিয়ে নুনে একমকু দেন মিহার মিত বিতং কোলে গারুই ফাদো মিবুনি দেন গেনে হামা সামিরা এবিস
1: এঙ্গে বুনাম পেনু বাই চেনু তি বুনানি একম বেস এঙ্গে একহালা
0: বুনাম পেনু বাই চে হামা মি বুনানি দেন ওকে এবাক পাবামা
1: আন ফাগওয়া কামে বুনান্তা
0: কোংকামে
1: আসল ফারিয়ে গে দিরুলমা হওয়ার বড় বাদল তাকে আতুইচকা
0: দেন বাদল আন্নানিতা আবদু একুত কন্নুলে ভেনেনু দেন গদি ওয়াক্কি দেন গদি ওয়াক্কি আহনা মি দিমাভি কইবেস মিকা কামকা দিমাভিমা বাদল আন্নানি
1: তিকং গাবুল কুরা এক মহান গাবুল নুকুরা কামে গবে
0: এই কোংকামে
1: উমর বদলবেন নো কমে গতে বেস উমর জেন ফারি গে হুসাস্ত কামে দে বিসনা বারিন কতিম ব্যান্দন
0: এন বিসনাই এন আহন্ন মার রঙল বরং আলালা বিবর কো আর হিং হামে জে সাদে এন বরম মাসে কি করে
1: এক মাহরিন ক হুসাসেন করে বেতি কামে
0: হুসাস করে বে
1: দেন কি বে কুড় কুড় কোটশিক বদল করি ಹಮ ಹೆಂಗ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕ ಏನೇ ಅಕ್ಕಿ ಗೌಳವೇನೇನು ಕಿವೆ ಫರಿಯ ಕೊಟ್ಟಿನೇರವಿ ಹಾಹರ್ ಫರಿ ಹೇದಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೋಯ್ ಫರಿಗೆ ಹುರಿಹ ಹಂದಾಣ ಕೈ ಹುಸಾಸೆಂ ಎತನ ಗುಳಿ ಫಹುನ್ನಾನು ದೋಗೆ ತಮಿ ಪುಣಿ
0: ತಿಬುಣಿ ರಂಗಳು ವಾಹಕೆ ಏಕಮಕು ಎಂಗೇನು ಏನೇ ಕಿ ವರ ಮಮ್ಮ ಮೀಹಿಕ್ಕ ಏಹಿಂ ವಿಮ ಮಮ್ಮ ಅದೆಕೊಳಿ ಏನ ನುಹತಾಣೆ ದೆಂ ಆಹಾರಿ ಮಿಸ್ಪೇನು ಮೆನ್ನು ಏಗುತೆ
1: ಕಂಗೆಗ್ಗೆತಿ ತೇ ಬದಲ ಮಿಸ್ ವಾಣೆ ಏನ್ ತಿಬ್ಬುನಾ ಹೆ ಮಮ್ಮ ಎಹತ್ರಾಮ್ ಕುರಂ ವಿಸ್ ಚೆಹೆನ್ ಏಕಮಕು ಅಭಿಮಿ ಹೇಗೆ ವಿಸಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಏಕಂ ವಿಸ್ ಅದನ್ನುಗ ಬಹಟ್ಟ ವಾಣೆನ್ನು
0: ಬಹಟ್ಟೈ ಏ ತಿಯೇನ್ ನೋಣೆ ಇಕ್ಕಲ ಅರುಹಂ ಮಶ ಗುಳಿಯೇ
1: ಮಗುಮತಿ ಮಶಾವಿಸ್ ದಿಮಾವಿಯೇ ಅದ್ವಿಸ್ ಮೀಹಕಾವಿಸ್ ನೋಯ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿವಣೆ ಏಕಮಕು ಮಶೆ ನುವೆನ್ ಅಹ ಅಷ್ಟು ನುಕ್ಕಿರೋಣ ಹಾಕ
0: ಅದೇ ಸಹಿತಗೊಂಡನಿ
1: ಮೀ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನುವೆಂಗೆ ಎದೆನ್ ಲಂದೋಳು ಜುವಾಂಕಮ್ ಗಣ್ಣ ಹಿಯಾಲ್ದೋ ದುನಿಯ ಫಿಣಿ ದಸ್ವೀಮ ಎ ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ ಬದಲ್ವಾಣೆಣ್ಣು
0: ಎಂತ ಹಿಯೆನ್ನುವೆ ದೆನ್ ನೇಗೆ ವೇದಾಣಿ ತಿಹೆಂ ಕಮ ವಿಸ್
1: ಎಹೆನ್ನೇ ವಾಣಿ
0: ಬುಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಂ ವಿಣೋಂ ಹೋ ಮೀ ಅದೇ ಬದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕುಫ ರಾವಾಲ ಬಲಾಶೋ ಬುದ್ಧದು ಹೋಗಿರಿಯ
1: ಓ ಎಹೆಂತ
0: ಮೀಗ ಹಿಂಗಾಲ ಗುಳಪ ಕೇಳಿ ಎಮ್ಮೆ ಅದ ಜಸಾಣಿ
1: ಉಳೇ ಗುಳ ವರ ಗಿನಮಿಯುಗೆ ನಂಬರು ಹುಣ್ಣಾಳು ಮಗೆ ಅತುಗ
0: ಗುಳಾಫ ಮಜಸಾಫ ಅರ್ಹಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ನಿಗೆ